0: सब देवे ताकि शोभा बनी नानक हे गुण नाम सुखमनी
1: ओंकार सतगुरु प्रसाद उकार खासे दशकत का पातशाही दसवीं अकाल पुरख की रक्षा हमने सर्व दुख की रक्षा हमने सर्वकाल जी की रक्षा हमने सर्वलोह जी दी सदा रक्षा हमने।

0: पर्वत स्वरूप शांति देव स्वरूप शांति
1: बेअंत संगता वल्लभ आप जी दे हजूरी बेच अमृत वेले तो ए समय तक सोने सोने रुमाले अते शरदा दे फुल

सवैया मगर समय सब शाम के संग होए खेलत थी मन आनंद पाई शीत लगे तब दूर करे हम शाम के अंग।

नानक श्री नानक चक्र तेहन आर पर न जाहन आर पान जाहन जेहर रूप रंग आर रूप रंग आर रूप रंग आर रूप रंग अचल मूरत चल मूरत दास अमृत ओट इंद्र इंद्रावण त्रिपवन महीप पवन महीपर नेत नेत बन नेत सर्व नाम सर्व नाम कत कवन कर्म नाम कर्म नाम

महाराज, अंतरजामी सच्चे पातशाह जी महाराज, धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, आप जी दे पावन पवित्र स्थान तखत सचखंड दरबार दी हाजरिया वरदे होए कीर्तन दे सत्काव जो संगता वालों बिनत माया हाजिर होए, जिसका जाने विच माया हाजिर कीती सो सुख जाने भरपूर करना, नाम दान गुरसिखी वाला जो नसना दे अरता बख्शनिया सामसा।

त्वो प्रसाद तोमर छंद हर जन्म मरण विहीन दस चार चार प्रवीण अकलंक रूप अपार अंशिज तेज उदार अनभिज रूप दुर

अजात हरिया पाद हरिया मित्र हरिया मात हरिया रोग हरिया शोक हरिया भरम हरिया करम हरी अजय हरिया भय हरिया भेद हरिया छेद हरिया खंड।

त्वा प्रसाद कबित खूक मल हरि गज गदहा विभूत दारि गद्वा मसान वास करियो करत है गुगमट वासी लग डोलत उदास प्रगतर वर्ष दीव मोन साधी मरत है बिंद के सदैया ताहि हिज की बड़ैया देत बंदरा सदीव पाए नांगे फिरत है अंगना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक गैर के विहीन छेन कैस के तरत है भूत बन चार छेत छौना सब दुधारी पौन के हारी सो भुजंग जानियत है तृण के बचैया धन लोभ के तजैयत तगौवन के जैया ब्रिक भैया मानियत है नभ के उड़ैया ताहे पंछ की बड़ैया देत बगुला बिडाल ब्रिक ध्यान ठानियत है जेत बड ज्ञानी तेनो जानी पै बखानी नाहे असन प्रपंच मन भूल आनियत है भूम के बसैया ताहे भूचरी के जैया कहे नभ के उड़ैया सो चिरैया कह पखानी है फल के भचैया ताहे बांधरी के जैया कहे आदि सफिरैया ते भूत कह पछानी है जल के तरैया को गंगे ऋषि कहत जग आग के भचैया सो चकोर सम मानी है सूरज सिवैया ताहे कौल की बड़ाई देत चंद्रमा सिवैया को कवि के पहचानी है नारायण कछ मछ तेंदुआ कहत सब कौल नाभ कौल जेह ताल में रहत है गोपीनाथ गुजर गोपाल सब दिन चारी दिखि गस नाम के महंत लहियत है माधव भवर ओटे रुको कन्हैया नाम कंस को बधैया जम दूध कहियत है मूड रूड पीटत न गूढ़ता को भेद भावे पूजत न ताहे जाके राख रहियत है विश्वपाल जगतकार दीन दयाल बैरिसाल सदा प्रतपाल जम जाल ते रहत है जो कि जटाधारी सती साचे बड़े ब्रह्मचारी।

नौली गरम जल होम पावक पवन होम अधोमुख एक पाए ठंड न बहत है। मानव फनिंद देव दानव न पावे भेद भेद योग देव नेत नेत कह कहत है। नाचत फिरत मोर बांधर करत घोर दामनी अनेक भाव कर यही करत है। चंद्रमात शीतल न सूरत तपत तेज इंद्र सोना राजा भव भूम को भरत है। शिव से तपस्याद ब्रह्म से न वेदचारी सनत कुमार से तपस्या न अनत है। ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जोगन की चौकरी फिर आई फिरत है। एक शिव भय एक गए एक फिर भय राम चंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मा अर विष्ण कित वेद ओ पुराण कित सिमृत समूहन के होए होए बिताए है। मोन दी मदार किते असुनी कुमार किते अंसा अवतार किते काल बस भय है। पीरे ओ पिकांबर किते गन न परत एते भूमि हित होए के फिर भूमि ही मिले है। जोगि जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया कई कोस लो चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रप को दलत है। मानसे महीप और दिलीप कैसे छत्रधारी बड़ो अभिमान भुज दंड को करत है। तारा से दिल्ली सरत रुजोधन से मानदारी भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत है। सिजते करे अनेक तोप जी कपट फेस बोस दी अनेक दानी वावत है। शीस को कहा भयो मल्ल जो पे काढ़त अनेक दंड सोतन दंडोत अस टांग अथ तीस को कहा भयो रुकी जो पे डार रहे ऊर्ध मुख मन तेना मुंडने हो रायो आदि इस को कामना अधीन सदा दामना प्रवीण एक भावना विहीन कैसे पावे जगदीश को। शीस पट कत जाके कान में खजूरा दस मुंड छट कत मित्र पुत्र हूं के सुख सौ आंख को चरैया फल फूल को भछैया सदा बन को ब्रह्मैया और दूसरो न भोग सौ कहा भयो भेड़ जो खसत शीस वृक्षन सो माटी को भछैया बोल पूछ लीज जोग सौ कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कैसे भेट पर लोक सौ। नाचोई करत मोर दादर करत शोर सदा घन घोर घन करे हुई करत है। एक पाए ठांडे सदा बन में रहत वृक्ष फूक फूक पाम भूम श्रावक धरत है। पाहन अनेक जोग एक ठोर बास करे काग और चील देश देश विचरत है। ज्ञान के विहीन महादान में न हुजलीन भावना यकीन दीन कैसे के तरत है। जैसे एक स्वांगी कहूँ जो किया बरा की बने कब हूँ सन्यास भेष बान के दिखावई। कहूँ पौन हारी कहूँ बैठ लाए तारी कहूँ लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गावई। कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पै लगावे बारी कहूँ दंड धारी हो लोग न भ्रमावई। कामना अधीन पर्यो नाचत है नाचन सो ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोक पावई। पंच बार की दर पुकार पर शीत काल कुंजर ओगत अनेक दा पुकार ही। कहा भयो जो पे काल वत्र लियो कांसी बीच चीर चीर चोर टाक उठार हंसो मार ही। कहा भयो फांसी डार बूढ़ जड़ गंग धार डार डार फांस ठग मार मार डार ही। डूबे नरक धार मूड ज्ञान के बिना विचार भावना विहीन कैसे ज्ञान को विचार ही। ताप के सहित जो पे पाई है अतापनाथ तापना अनेक तन घायल सहत है। जाप के कियत जो पे पायत अजाप देव पूतना सदीव तुही तुही उचरत है। नभ के उड़त जो पे नारायण पाइयत अनल आकाश पंछी डोल वो करत है। आग में जरत गदरांड की बरत कर पता।

कोट आग उठे न्यार न्यार हो के फिर आग में मिलाहेंगे। जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है, धूर के कणों का फिर धूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहाहेंगे। जैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हुए, ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। केते कछ माछ कहते उनको करत भच, केते अच वच हो पच उड़ जाएंगे। केते नब बीज अच बच को करेंगे भज, के तक प्रत्यक्ष हो पचाए खाए जाएंगे। जल कहा थल कहा, गगन के गौन कहा, काल के बनाए सब काल ही चबाहेंगे। तेज ज्यों तेज में अतेज जैसे तेज लीन, ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। कूकत फिरत केत रोवत मरत, केत जल में डुबत केत आग में जरत है। केत गंग बासी केत मदीना मक्का निवासी, केत उदासी के ब्रह्माई फिरत है। करवत सहत केत भूम में गड़त, केत सुहा पे चढ़ में उड़त, केत जल एक जारी मरत है। सोध हर देवता विरोध हर, दानो बड़े बोध हर, बोधक प्रबोध हर, जापसी घस हर, चंदन लगाए हर, चोचार बूझ हर, वाहन चढ़ाए हर, लापसी गा हरे गोरन मनाए हरे, मड़ी मटली बहारे भीतर लगाए हरे, छापसी गाए हरे, गंधर्व बजाए हरे, किन्नर सब बच हरे, पंडित।

न रागं न रंगं न रूपं न रेखं न मोहं न क्रोहं न द्रोहं न द्वेखं न कर्मं न भर्मं न जन्मं न जातं न मित्रं न सत्रं न पितरं न मातं न नेहं न गेहं न कामं न धामं न पुत्रं न मित्रं न सत्रं न भामं अलेखं अभेखं अजोनि स्वरूपं सदा सिद्धता बुद्धता वृद्ध रूपं नहि जान जाई कछु रूप।

रंग का धम स्वरूप अखंड प्रतापाद अच्छे विभूत न जन्मंग न मरणंग न वर्णंग न व्याधे अखंडे प्रचंडे अदंडे असाधे न नेहंग न गेहंग सनेहंग सनाथे उदंडे अमंडे प्रचंडे परमाथ चित्रे न रायंग न रंगंग न रूपंग न रेखंग न लोभंग न चोभंग भूतंग फेखंग न सतरंग न वितरंग न नेहंग न गेहंग सदेवंग सदा सर्व सर्वत्र सनेहंग न कामंग न क्रोधंग न लोभंग न मोहंग जोनि अक्षयाद अद्वय अजोहंग न जन्मंग न मरणंग न वर्णंग न व्याधंग न रोगंग न सुखंग भय निर्विखादंग अछेदंग अभेदंग कर्मंग कालंग खंडंग भंडंग प्रचंडंग पालंग न तातंग न मातंग न जातंग न कायंग न नेहंग न गेहंग न भर्मंग न भायंग न रूपंग न भूपंग न कायंग न कर्मंग न त्रासंग न प्रासंग न भेदंग न भर्मंग सदेवंग सदा सिद्ध

गेहं न शोकं न साकं परेयं पवित्रं पुनीतं गताकं न जातं न पातं न मित्रं न मंत्रे नमो एक तंत्रे नमो एक तंत्रे न धर्मं न वर्मं न सर्वं न साके न वर्मं न चर्वं न कर्मं न बाके न सत्रं न मित्रं न पुत्रं स्वरूपे नमो आदरूपे नमो आदरूपे। कहूं कंज के मंज के भरम भूले, कहूं रंग के राज के।

कहूँ देह दुख कहूँ औखति रोग के शोक सुखं कहूँ देव विद्या कहूँ दैत बानी कहूँ जच कंद्रव किन्नर कहानी कहूँ राजसी सात की तामसी हों कहूँ जोग विद्या धरे तापसी हों कहूँ रोग रहता कहूँ जोग जुगतं कहूँ भूम की भुगत मैं भरम भुगतं कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हों कहूँ जच विद्या धरे मानवी हों कहूँ राजसी हों कहूँ राज कन्या कहूँ सृष्ट के पृष्ठ के रिष्ट पन्नया कहूँ वेद विद्या कहूँ व्योम वाणी कहूँ कोक की काव कथा कहानी कहूँ अद्र सारंग कहूँ भद्र रूपं कहूँ मद्र वाणी कहूँ क्षुद्र स्वरूपं कहूँ वेद विद्या कहूँ काव रूपं कहूँ चेष्टा चार चित्रं स्वरूपं कहूँ परम पुराण को पार पावे कहूँ बैठ कुरान के गीत गावे कहूँ शुद्ध शेखं कहूँ

कहूं त्याग गृहं कहूं जोग भोगं कहूं रोग रागं कहूं रोग हर्ता कहूं भोग त्यागं कहूं राजसाजं कहूं राजरीतं कहूं पूर्ण प्रज्ञा कहूं परम प्रीतं कहूं आरबी तोर की पारसी हो कहूं पहलवी पस्तवी संस्कृति हो कहूं देश भाख्या कहूं देव बानी कहूं राज

नागबानी कहूं गारडू गूड़ कथा कहानी कहूं अक्षरा पक्षरा मच्छरा हो कहूं वीर विद्या भूतं प्रभा हो कहूं शैल छाला धरे छत्रधारी कहूं राजसा

तीरथ भर मत्सु भरम कई यज्ञ होत्र कई देव करम कई कर्त वीर विद्या विचारण हित दबदास पायत न पार कहूँ राज रीत कहूँ जोग धर्म कही सिमृत शास्त्र दुचरत सो करम न्योली याद करम कहूँ हस्त दान कहूँ अश्वमेध मख को बखान कहूँ करत ब्रह्म विद्या विचार कहूँ जोग रीत कहूँ वृद्ध चार कहूँ करत जक्ष गंधर्व गान कहूँ धूप देव कहूँ अर्घ दान कहूँ पितृ करम कहूँ वेद रीत कहूँ नृत्य नाच कहूँ गान गीत कहूँ करत शास्त्र सिमृत उचार कही भजत।

न रेख रुखं जे ताप न साप न सुख सुखं जे रोग न शोक न भोग भुयं जे खेद न भेद न छेद छयं जय जात न पात न मात वितं जय रचयं छत्रि छत्र छितं जय राग न रेख न रोग भणं जय द्वैख न दाग न दोख गणं जय अंड ते ब्रह्मंड रचियो दस चार करी नवखंड सचियो रज तामस।

तेज कियो अनुभव पद आप प्रचंड लियो श्री सिंधु रूपिंद नकिंद नकं श्री जाच गंधर्व फणिंद भुजंग रज देव देव अभेव नरंग नरपाल नृपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंडज सेत जोत भुजंग किए देव देव सराद विदंग अनखंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जात न पात न ज्योत जुतंग जय तात न मात न भ्रात सुतंग जय रोग न शोक न भोग भुअंग जय जंप किन्नर जच जुअंग नर नार नपुंसक जाहे किए गण किन्नर जाच भुजंग दिए गज बाज रथादिक पांत गणंग भव भूत भवेख भवान तुअंग जय अंडज सेतज जेर रजंग रज भूम आकाश पताल जलंग रज पावक पवन प्रचंड बली वन जास कियो फल फूल कली वो मेरा आकाश निवास चितंग रच रोज एकादश चंद्र वृतंग दुत चंद्र।

जुगंग हुआ भंजन गंजन आद सरंग जय बंधत देव देव नरंग गण किन्नर जच भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अंज अन भंज प्रभा अन गंज वृतंग जय पार न पावत पूर्ण मतंग अनखंड स्वरूप दंड प्रभा जय जम पद वेद पुराण सभा।

तब ताप करे नहीं नायक कृपा नित पान पर जय फोकट धर्म सफेत जह एक चित्त कृपा निध को जब है ते या भव सागर कोतर है भव भूल न देह पुनर्धर है एक नाम बिना नहीं कोट प्रतिम वेद उचार दसार सुती जो वारस के जस के रस है ते भूल न काल फंदा फस है त्व प्रसाद नराज छंद अगंज आद देव है अभंज भंज जानी है अभूत भूत है सदा गंज गंज मानी है अदेव देव है सदा भेव भेव नाथ है समस्त सिद्ध वृद्धता सदीव सर्वसाथ है अनाथ नाथ नाथ है अभंज भंज है सदा गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्धता अनूप रूप स्वरूप है अछिज तेज मानी है सदीव सिद्ध शुद्धता प्रताप पत्र जानी है नराग रंग रूप है नरोग राग रेग है अधो गता गदग है अभूत ब्रह्म वेग है न तात्मात जात है न पात चिहन वर्ण है अदेख सेख भेक है सदीव विश्वभरण है विश्वंबर विश्वनाथ है विशेख विश्वभरण है जिमी जमान के विखे सदीव करम भरम है अद्वेख है अभेक है अलेख नाथ जानी है सदीव सर्व ठौर

है ना नर है ना नार है ना चोर है ना साओ है ना साह को कुमार है, न नेह है न गे है न देह को बनाओ है, न छल है न छिद्र है न छल को मिलाओ है, न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को स्वरूप है, न राग है न रंग है न रेख है न रूप है, न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाओ है, न छल है न छिद्र है।

है, ख्याल खंड रूप है, अछेद है, अभेद है, न रंग है, न रूप है, परे है, पवित्र है, पुनीत है, पुराण है, अगंज है, अभंज है, गरीम है, कुरान है, अकाल है, अपाल है, ख्याल है, अखंड है, न रोग है, न सोग है, न भेद है, न भंड है, न अंग है, न रंग है, न संग है, न सात है, प्रिया है, पवित्र है, पुनीत है, प्रमात है, न सीत है, न सोच है, न ग्राम है, न घाम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैत है, न नर को स्वरूप है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र के विभूत है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न द्वय है, न भेक है, न दुई है, न द्रोह है, न काल है, न बाल है, सदीव दयाल रूप है, अगंज है, अभंज है।

सर्व ठौर बिखेर मयो जय चक्र चहन न चित्र आद देव उदार मूर्त अगाध नाथ अनंत आद अंत न जानिए अभिखात देव दुरंत देव भेव न जान ही जे मरम वेद कतेब सनक औसन केस नंदन पाव ही न सेब जस किन्नर मछ

दुष्ट गंजन शत्रु भंजन परम पुरख ब्रह्मनाथ दुष्ट हरता सृष्ट करता जगत मैं जय गाथ भूत भव भविख भवान प्रमाण देव गंज आद अंत अनाद श्रीवत परम पुरख भंज धर्म के अन करम जित कीन तौन पसार देव देव गंधर्व।

नारद आदिक वेद व्यासक मुन महान अनंत ध्याय ध्याय थके सभय कर कोट कष्ट दुरंत गाय गाय थके गंधर्व नाच पचर पार सोत सोत थके महासुर पायो नह पार।

वन रिष्ट को पुष्ट है कहाँ सृष्ट को विचार, कवन सृष्ट को विष्ट है कहो सकल विस्तार। दोहरा कहाँ कर्म को कर्म है कहाँ भ्रम को नाश, कहाँ चितन की चेष्ट।

त्वा प्रसाद देरक त्रिभंगी छंद दुर्जन दल दंडन असुर विहंडन दुष्ट निकंदन आद वृते चचरासुर मारणन पतित उदाहरण नरक निवारण गूढ़ गते अच्छे अखंडे तेज प्रचंडे खंडे उदंडे अलख मते जय जय हो सीम खासुर मर्दन रमक वर्दन छत्र छिते आसुरी विहंडन दुष्ट निगंडन पुष्ट उदंडन रूप अते चंडासुर चंडन मुंड विहंडन धूम्र बिंदुन सण महक मथे दान प्रहारन नरक निवारण।

सुनमर्दन पाप विनाशन धर्म करे। अघोघ निवारण दुष्ट प्रचारण सदृष्टोपारण शुद्ध मते फणि अर्फुंकारण बाघ बकारण शस्त्र प्रहारण साध।

चाचर चमकारन छिछुर हारन धूम धुंगारन द्रप मथे दाढ़वी वृदंते जोग जयंते मर्ज मथंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूरज प्रतेजन अष्ट भुजे जय जय हो सी मैखा सुर मर्दन भरम विनाशन धरम धुजे घुंगुरु खमंकण शास्त्र झमंक।

कंट का विराजे रुण झुण बाजे ब्रह्म भाजे सुनत सुरंग को किल सुन लाजे गिल बिग भाजे सुखूप राजे मध उरंग दुर्जन दल तछे मंथन रिझ सब न भजे रूह रणंग जय जय हुसी मै खासुर मर्दन चंड चक्रदन आद गुरंग चाचरी प्रचोधन दुष्ट विरोधन रोष अरोधन क्रूर वृते धूमराज विधुंसन प्रलय प्रजुंसन जग विधुंसन शुद्ध मते जाल पाजयंती शत्रु मथंती दुष्ट प्रदाहन गाढ़ मते जय जय हो सी मै खासुर मर्दन आद जुगाद अगाध गते खत्रियाण खतंगी अभय भंगी आद अनंगी अगाध गते बृडलाज बिहंडन चछुर दंडन तेज प्रचंडन आद वृते सुर नर प्रतवारण पति दो धारण दुष्ट

सर्वर वरखण दुष्ट थरखण पितल तले अष्टायत बाहन बोल निबाहन संत बनाहन गूढ़ कते जय जय हो से मैं खासुर मर्दन आद अनाद अगाध वृते दुख दुख प्रबच्छन सेव कर रक्षण।

कही ली ज्योत जति ली धुंध मते अष्टायद चमकण सहस्र झमकण दाविंदम कण आद वृते डुक डुकी दमंके बाघ भुवंके हुजा फरंके शोध गते जय जय उसी मैं खासुर मर्दन आद जुगाद अनाद मते चछरा सुमारण नरक निवारण पति दो धारण एक भटे पावान विहंडन दुष्ट प्रचंडन खंड अखंडन काल कट्टे।

दयाल दाता दुरंत दुख दोख रहत जेह नेत नेत सब वेद कहत। कई उच नीच कीनो बनाओ सब वार पार जा को प्रभाव सब जीव जंत जानंत जाहे मन मूढ़ क्यों न सेवंत ताहे। कई मूढ़ पत्र पूजा करंत कई सिद्ध साध सूरज सिवंत कई पलट सूरज सिजदा कराए प्रभ एक रूप द्वै के लखाए। अंशिज तेज अनभ प्रकाश दाता दुरंत अद्व अना सब रोग शोक ते रहत रूप अनभ काल अच्छ स्वरूप। करुणा निधान कावल कृपाल दुख दोख हर।

पच्छ बसो नग नाग नरा देव सर्व समय सबको प्रत पार है। पोखत है जल मै थल मै पल मै कल के नहीं करम विचारे। दीन दयाल दयानित दोखन देखत है पर देत न हारे। दाहत है दुख दोखन कौ दल दुजन के पल मै दल डारे। खंड अखंड प्रचंड पहारण पूर्ण प्रेम की प्रीत संभारे। पार न पाए सके पदमावत वेद कते व भेद उचारे। रोज ही राज बिलोकत राजक रोग रुहान की रोज नटारे। कीट पतंग कुरंग

विहीन स्नेह सबोधन नेह विरक्त अगेह अच्छा है। जान को दे दे अजान को दे दे जमीन को दे दे जमान को दे है काहे को डोलत है तुम रे सुत सुंदर श्री पदमापतले है। रोकंते अर सोकंते जल जो कंते वह भात बचावे शत्रु अनेक चलावत खावत ऊतन एक न लागन पावे। राखत है अपनो

अत्र के चलैया छेद छत्र के धरैया छत्र धार्यो के छलैया महासत्रन के साल है। दान के देवैया महामान के बढ़ैया अवसार के देवैया है कटैया जम जाल है। युद्ध के जतैया और विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के देवैया महामान हूँ के मान है। ज्ञान हूँ के ज्ञाता महाबुद्ध दा के दाता देव काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है। पूर्वे न पार पावे हिंगुला हिमाल ध्यावे गोर कर तेज गुण गावे तेरे नाम है। जोग जोग साध पौन साधना के देक बांधे आरब के आरबी आराध तेरे नाम है। फरा के फिरंगी माने गंधारी कुरे सी जाने पच्छम के पच्छमी पछान निज काम है। मराठा मंगेली तेरी मन सो तपस्या करे देड़ वैत लंगी पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिल वाली तेरी आज्ञा में चलत है। रोह के रोहले मांग देश के मंगेल वीर बंग से बुंदेले बाप पुंज को मलत है। गोखा गोन गावे चिन मचीन के शीस ने

है कि मोहनी को मंत्र है निजंत्र के गजानी है। तेज हूं को तर है कि राजसी को सार है कि शुद्धता को घर है कि सिद्धता की सार है। कामना की खान है कि साधना की शान है। विरक्तता की बान है कि बुद्ध को उदार है। सुंदर स्वरूप है कि भूपन को भूप है कि रूप हूं को रूप है कुमत को प्रहार है। दीनन को दाता है कि नीमन को गारक है। साधन को रक्षक है गुणन को पहाप है कि बुद्ध को विभूत है नासी है। काम को कुनिंदा है कि खूबी को देहंदा है कि नीमन गरिंदा है कि तेज को प्रकाशी है। काल हूं के काल है कि शत्रुन के साल है कि मित्रन को बोकत है कि वृद्धता की वासी है। जो को हूं को जंत्र है कि तेज हूं को तंत्र है कि मोहनी को मंत्र है कि पूर्ण प्रकाशी है। रूप को निवास है कि बुद्ध को प्रकाश है कि सिद्धता को वास है कि बुद्ध हूं को घर है। देवन को देव है निरंजन अभेव है देवन को देव है कि शुद्धता को सर है। जान को बचैया है मान को देवैया है जमजाल।

अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण है सेवक अधीन है कटैया जम जाल के देवन के देव महादेव हूँ के देवनाथ भूम के भुजैया है मुहैया महाबाल के राजन के राजा महासाज हूँ के साजा महाजोग हूँ को जोग है धरैया द्रुम चाल के कामना के कर है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के छीर कैसे छीरावत छाज कैसे छतरा नेर छपा कर कैसे छब कालिंद्री के कूल के हंस निश सिहारुम हीरा सिंह हुसनाबाद गंगा कैसे धार चले सातो सिंध रूल के पारासी पलाऊ गढ़ रूपा कैसे रामपुर सूरसी सुरंगाबाद नी के रही झूल के चंपा सी चंदेरी कोट चांदनी सी चांदागढ़ कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के फटक सी कैलाश कमाऊ गढ़ कांसी बुर सीसा सी सुरंगाबाद नी के सोहियत है हिमा सी हिमालय हर हार सी हलब्बा नेर हंस कैसे हाजीपुर देखे।

ताहर जीसी बाते गज के जयकार लग जावे सुगनहार लग जावे सागर श्री अकाल सागर श्री अकाल दे दे गुरु बंद हाल से जीते गुरु बादे चढ़ दी तनाल अपनी से बादशाह जी गला हरा

हमरी करो हाथ दरछा, पूर्ण होए चित की इच्छा, तव चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट

चुन चुन सत्र हमारी मारी है, आप हाथ दे मुझे उबरी है, मरन काल का त्रास नवरी है, पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस ध्वज ज्यों करिय रक्षा, राख लेहो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर दस कंता, काल पाए ब्रह्मा पप धरा, काल पाए शिवजू अवतरा।

नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो,

दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने।

शंकर कैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संघरो दुष्ट जिते उठो।

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। श्री वाहिगुरु जी अरदास, एक ओंकार। वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याय जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौन दिया वेधाय। सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। कलगीधर जी पिता पंथ देवाली। अमृत के दाते शमशेर बहादुर जी। सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां जी दे आत्मक स्वरूप। धन धन सा

0: चला
1: सिमरन कमल विकास
0: प्रभु के सिमरन अर्जुनकार
1: सुप्रा सिमरन कांत न पार
0: सिमर से जन जन को प्रमया
1: नाना जिन जन सन्नी पया
0: हर सिमरन कर भगत प्रकट आए
1: हर सिमरन लब वेद उपाय
0: हर सिमरन वैश जति दाते
1: हर सिमरन नीत चौ कुन जाते
0: हर सिमरन नारी सब धरना
1: सिमर सिमर हर कारण करना
0: हर सिमरन क्यों सकल

0: समूह परशाम
1: जात्री काम तू जा करके
0: नानक हर हर अमृत बरखे
1: भगत जना के वर्तना
0: संजना के मन विश्राम
1: हर का नाम दास की ओर
0: हर के नाम उतरे जन कोट
1: हर जस कर दिन।

0: योग अभ्यास क्रम धर्म क्रिया
1: अध्यापन मध्य फिरिया
0: अनेक प्रकार किए बो
1: जतन हो में बो रतना
0: वीर कटाए हो मैं कर
1: वर्तनेम करे बो पाती
0: नहीं तुल राम नाम विचार
1: नानक गुरमुख नाम जपिए गवार
0: नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जी
1: महा उदास अपि सरथी
0: अगन माए हो मत पर
1: अनेक सब है वर कुम दान
0: न्योली कर्म करे बो
1: आसन जय मां संजम
0: निमक निमक कर सिर कटा।

0: देही को मो साधना करे
1: मंदे कबो न भिख्या करे
0: जल धोवे मो दे अनि
1: शुद्ध कहा होय काची पीत
0: मन हर के नाम की महिमा उ
1: नानक नाम उदरे पते बहु मोच
0: बहुत श्यानम जम का भो व्यापे
1: हरि जतन करत सनात्रापे
0: एक अनेक अगर

0: जिस जन को ब्रह्म दर्श प्यासा
1: नानकता के भल भल जासा
0: सगल पुरख में पुरख प्रधान
1: मिटे अभिमान
0: आपस को जो जाने नीचा
1: सो गलिए सबसे ऊंचा
0: ना का मन है सगल की रीना
1: हर नाम तिन गढ़ गढ़ चीना
0: मन अपने ते बुरा मिटाना
1: बेके सगल से साजना
0: दुख दुख जन सम दिशते
1: नान पाप नहीं ले पा
0: निर्धन को धन तेरो नाओ
1: नितावे को नाओ तेरा ताओ
0: निमाने को प्रभ तेरो माओ
1: सगल कटा को देवो दान
0: करण करावन हार स्वामी
1: सगल

0: जय प्रसाद तरूपर सुख बसे
1: प्रात बिनमता संग असे
0: जय प्रसाद पीवे शीतल जला
1: नय मन पावक कमला
0: जय प्रसाद पोगे सब रसा
1: सगल सामग्री संग साथ बसा
0: तीने हस्त पाव करने

0: तिन प्रभु जात
1: नानक कुंजन चरण कराता
0: गिनती पार ब्रह्म सब
1: जात अपना किया आपे माने
0: आपे आप करत निबेरा
1: किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा
0: सगल ते रह
1: सब जाने आत्म की रह
0: किस लय लड़ लाए।

0: श्री ठाकुर को रख मन माहे,
1: जिसको सिमर परम गत पावे,
0: जिसे जाय सदा मन अंदर,
1: आठ पैर सिमरत इस रसना, नानक सदा ध्याये ध्यावन जोग,
0: जिसे त्यागत अवल लुभावे,
1: मन आठ पैर ताका जस गावी जय।

0: मन सुख पावे हर हर जस कहते
1: मन सरनी पर ठाकुर प्रभुता के
0: मन सा सा सिमरो प्रभु जे
1: नानक ताकी भगत करे
2: प्रसाद आभूषण पहरे
1: मन ति सिमरो को आलस दीजे
2: प्रसाद अस्वस्थ स्वारी
0: मन ति प्रभु कबू न बिसारी
2: प्रसाद भाग मिलक
0: धन रात प्रभु तब अपने मना
2: तेरी मन बनत बनाए
0: उठत बैठत सत से ध्याए
2: जो एक
0: इया वो नानक तेरी रखे
2: प्रसाद करे पुण्य
0: मन आठ पैर कर दिसका ध्यान
1: सातारे
2: प्रसाद तेरा सुंदर
1: सोप्रभ सिमरो सदा अनूप
2: प्रसाद तेरी नीकी
1: सोप्रभ सिमरो सदा दिन रात
2: प्रसाद तेरी पत्र
1: गुरु प्रसाद नानक जस कहे
2: प्रसाद सुने करन
1: जय प्रसाद पेखे बिस्माद
2: प्रसाद बोले अमृत रसना
1: जय प्रसाद सुख सहजे बसना
2: प्रसाद हसत कर चले
1: जय प्रसाद संपूर्ण फले
2: जय
1: प्रसाद सुख सहज समावे गुरु प्रसाद नानक मन जागो मूल मनो विसार
2: तेरा
1: मूर्तता को जाप इसे जान मन सदा हजूर
2: पावे
0: मन मेरे तू तो से हो राच
1: नानक जाप जपे जप सोए
2: आप
1: गवाए सोहर गुण गाओ
2: प्रभु
1: दयाते कमल विकास
2: प्रसन्न बसे मन सोए
1: प्रभु दयाते मत उत्तम होए
2: आप

0: साध के संग मुख उजल होत साध के संग मिटे अभिमान
1: साध के संग प्रगटे सुज्ञान
0: साध के संग बूझे प्रभु नेरा
1: साध संग सब होत निबेरा
0: साध के संग पाए नाम रतन
1: साध के संग एक ऊपर जतन
0: साध की महिमा बरने कौन प्राणी
1: नानक साध की शोभा ब्रह्मा है समानी
0: साध के संग अगोचर मिले
1: साध के संग सदा पर फूले
0: साध के संग आवे बस पंचा
1: साध संग अमृत रस पुंचा
0: साध संग होए सबकी रहन
1: साध के संग मनोहर में
0: साध के संग न कतहु दावे
1: साध संग अस्तित्व मन पावे
0: साध के संग माया ते भिन्न साध संग दुश्मन सब मीत
1: साधु के संग महापुनीत
0: साध संग किस्यो

0: साध बढ़ाए
1: नानक वो बने आए
0: साध के संग न कबू दावे
1: साध के संग सदा सुख पावे
0: साध संग बसता गोचर ले
1: साधु के संग अजर सहे
0: साध के संग बसे थान ऊंचे
1: साधु के संग महल पहुँचे
0: साध के संग दृढ़े सब धर्म
1: साध के संग केवल पाए ब्रह्म
0: साध के संग पाए नाम निदान
1: नानक साधु के कुर्बान
0: साध के संग सब कुल उधारे साधु के संग शोधन पावे
1: संते सबको बरसावे
0: साध संग धर्म राय करे सेवा
1: साध के संग शोभा सुर देवा
0: साधु के संग पाप पलाये
1: साध संग अमृत गुण गाए
0: साध के संग सब तान गम
1: नानक साध के संग सफल जना
0: साध के संग नहीं कच घाल
1: घर से बैठा तो निहाल
0: साध के संग ना कलकुत कलुकत हरे
1: साध हर मेला
0: जो इच्छे सोई फल पावे
1: साध के संग ना मिटता जावे
0: पार ब्रह्म साध रिद बसे
1: नानक उतरे साध सुन रसे
0: साध के संग सुनो हर नाओ
1: साध संग हर के गुण गाए
0: साध के संग ना मनते बिसरे साध के संग लगे प्रभु मीठा
1: साधु के संग घटघटीठा
0: साध संग भय आज्ञाकारी
1: साध संगत भय हमारी
0: साध के संग मिटे सब रोग
1: नानक साध बैठे संजो
0: साध की महिमा।

0: भगवती भगवत का रंग
1: सकल ज्ञान के दुष्ट का संग
0: मन पे बिनते सगला परम
1: पर मुझे सगल पार ब्रह्म
0: शासन पापा मल खोवे
1: भगवती की मत उत्तम होवे
0: भगवंत की टहल करे नित नित
1: माता नर पे

0: जोगी
1: कई कोटा देरस भोगी
0: कई कोट पंखी सरप उपाय
1: कई कोट पाथर बिरख निप जाए
0: कई कोट पवन पानी बैसंत
1: कई कोट देश भू मंडल
0: कई कोट सस्यर सूर नक्षत्र
1: कई कोट इंद्र से छत्र
0: सगल समग

0: बृहस्पति
1: जिसके अंतराजमान
0: सो नरक पाती हो स्वान
1: जो जाने में जो बनवन
0: सो वस्ता का जन
1: आपस कौ कर्मन कहावे
0: जन्म रे बोझो रमावे
1: भूमि का जो करे गुमान
0: सो मोर कंदा ज्ञान
1: जिसके हृदय गरीब सावे
0: नानक या मुक्ता के सुख पावे
1: मनता हुई करे घर पावे
0: इस मान को संग न जावे
1: लश्कर मानक ऊपर करे
0: आज भीतर दाता होए बिना
1: सबते आप जाने बलवंत
0: किन में हो जाए बस मंत्र
1: से न बदे आप अहंकार
0: धर्म राय किस करे कुवारी
1: गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान
0: भोजन नानक दल गए परवान
1: कोट कर्म करे उदारे
0: धर्म पावे सगले बिचारे
1: तपस्या करे
0: अहंकार नरक सुरत फिर फिर अवतार
1: जतन कर आत्म नहीं
0: रहे हर डर के को कैसे गवे
1: जो भला कहा
0: जिसे भलाई निकट न आवे
1: कौन
0: आनंद ताकि निर्मल सोए
1: जाने मुझसे कुछ होए
0: तब इसको सुख ना ही कोए
1: जाने मैं कुछ करता
0: तब लग गर्व जो मैं फिरता
1: तारे कोई बैरी मीत
0: तब लग ने चन्ना ही जीता
1: मोह मगन संग माए
0: तब लग धर्म राय दे सजाए
1: पाते बंधन टूटे
0: गुर प्रसाद नानक हो छूटे
1: सहस कटे लकट उद्धावे
0: जपत में आवे माया पाछे पावे
1: क्या के करे
0: न तृप्तावे कब कब मरे
1: ना संतोख नही कोई राजे
0: सुपर मनोरथ बिते सब काजे
1: नाम रंग सरब सुख होए
0: बड़ भागी किसे प्राप्त होए
1: करन करावन आपे आप
0: सदा सदा नानक जाप
1: करावन करने
0: हाथ इसके हाथ का विचार
1: जैसी दृष्ट करे तैसा हो
0: आपे आप आप प्रभ सोए
1: कुछ कीनो सो अपने रंग
0: सबे दूर सबो के संग
1: करे
0: विवेक आपे आपे आने
1: बिन से
0: आए न समाए
1: आप उपदेश समझे
0: आपे रचा सबके साथ
1: आप कीनो आपन विस्तार
0: सब कुछ उसको करने हार
1: बिन कहूं किस होए
0: तांत नंतर के सोए
1: चलित आप करने
0: हार करे रंग पार
1: आप मन अपने मान
0: नानक की मस्कर न जाए
1: सत्य सत्य प्रभु स्वामी
0: गोर प्रसाद किने बख्यानी
1: सच सच सच सब कीना
0: कोड मदे किने मिले चिना
1: भला भला तेरा रूप
0: सुंदर अपार रूप
1: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बात
0: गट गट सुनी

0: ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी,
1: ठाकुर का सेवक सदा पुजारी,
0: ठाकुर के सेवक के मन प्रति,
1: ठाकुर के सेवक की निर्मल रीता,
0: ठाकुर को सेवक जाने संग,
1: रब का सेवक नाम के रंग,
0: सेवक को प्रपालन हारा,
1: सेवक की राखे निरंकारा,
0: सो सेवक जिस दया प्रभधारा,
1: नानक सो सेवक सास सास समारे,
0: अपने जन का सेवक ढाके,
2: अपने सर पर रखे,
0: अपने जन का पर्दा ढाके,
1: अपने सेवक की सर पर रखे,
0: अपने दास को देव डाई,
1: अपने सेवक को नाम जपाई,
0: अपने सेवक की आपत राखे।

0: अपना प्रभु पछाता
1: सो जन सरब तो का दाता
0: इसकी शरण सरब सुख पावे
1: इसके तरह सब पाप मिटावे
0: और स्यानब सगली इच्छा
1: ये जन की तू सेवा लाग आवन जानन होवी तेरा
2: नानक तुझ जन

0: सेवक गुरु की मत ले,
1: विध विध वे गुरु का मन माने,
0: सो सेवक परमेश्वर की गत जाने,
1: सो सतगुरु जी सिर दे अरना,
0: अनक बागुरु को बल जाओ,
1: करुण धान जी का दाता,
0: आठ पैर का ब्रह्म,
1: ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म,
0: लेके आप नहीं कछु परम,
1: सैन से अनपलिया ना जाइए,
0: नानक ऐसा गुरु बड़ भागी,
1: सफल दर्शन पे कदम।

0: भाई कुर्सी तने
1: सतपुर पूरन विवे
0: कहो बोलना पहुंचत परानी
1: अगम गोचर ब्रह्म निर्वाणी
0: निराहार निर्वैर सुखदाई
1: साकी की मति ने न पाए
0: अनेक भगत बंधन नित करे
1: चरण कमल हृदय सिमरे
0: सत बलिहारी सत

सबसे रेख निरंजन राय भक्ति लगतन के सवाय मंत्र कावन प्रसाद भंडन बांध में प्रसाद भंडन दास में प्रसाद पूरन पूरे

0: उत्तम श्लोक साध के बचन
1: अमृत लाले रतन
0: सुनत कमावत हो तो
1: आप तले लोके निस्तार
0: सफल जीवन सफलता का संग
1: जाके मन लगा रंग
0: जय जय सबदे अनाहद।

सतगुर प्रसाद जल तल मैयल पूरिया स्वामी सिरजनहार अनेक भांत होए पसरिया नानक एक ओंकार पौड़ी एकम एक।

ताकि आस कल्याण सुख जाते सब कछु होए। चार कुंट द दिस ब्रह्मियो तिस बिन अवर न कोए। वेद पुराण

0: दोस्त दुख तो है हमारे
1: और एक जवान पग पर दियारे
2: जिनके तुम संकट सतारे
1: जो कल तक जाओ दाए सब काला
0: दोस्त आए सतारे सब काला
1: कृपा दृष्टन जाए नेर हो
0: ताके पाप तनक मारे
1: सिद्ध सिद्ध कर मौसम होए
2: दोस्त साथ सके न कोई
1: एक बार

उस्माद रूप उस्माद रंग उस्माद ना के फ्रह जंत उस्माद पौन उस्माद पाने उस्माद अग्नि खेडे विडान उस्माद धरते उस्माद खाने उस्माद साध लगे प्राण उस्माद संजोग उस्माद विजोग उस्माद भूख उस्माद पांजड़ उस्माद रा उस्माद नेड़े उस्माद दूर उस्माद देखे हद।

भाव च गड़गड़ा बेगार भाव च धरती दबी भार भाव च फ्रैशर भार भाव च राजा धर्म दुबार भाव सूरज भाव चंद कहो करोड़ी चलत न अंत भाव सुध बुध सुरनाद भाव च आडाने आकाश भाव जोत महाप्रसूर भाव च आवे जावे पूर सगलिया पाव लिखिया सिर ले नानक निर्भव निरंकार सच एक महत।

कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपी पार कूड़ मिया कूड़ बीबी खप होए खार कुड़ कुड़ ने हुनका विसरिया करता किस नाल की जय दोस्ती सब जग चलन हार कूड़ मिठा कूड़ मा